0: नया नेपालको नया रेडियो
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।
2: अब रंग थेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो
3: याङदा परमेश्वरला करारला प्रतिज्ञा जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुल्ला स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी समक बसुगो अङ्क 71 रंग र स्वागत मुला नवियोग तामाङ नै दिन परमेश्वरला वचन रि तिगै रोमाञ्चक ताम म्रान्जी थेन्दे नाचु रङदेन जुबरे सिमुला चु याङला बेनन आवश्यकता करे छ्याम छोड्ना लबा परमेश्वरला प्रतिबद्धताला बारी दि परमेश्वर यम साचिन बङबा प्रतिज्ञा हिन्बा 2 कोरन्थी 3:4-5 परमेश्वरला ओन छङरी नानी ख्रिस यम दुक्क तब मुला खजिबै तम गई गनी रंगसेन लबरी खमला बिसी आपङ तर जम्मन तम परमेश्वर यम लबरी खमला यंगसे रंगलन शक्ति यम तिगा लबरी हमला विवाह आधारी यंगला आवश्यकता गरे छोना लबा मी दोबरी लासेला आरे मुला परमेश्वर दा यंगला छोना तला लागिरी भरोसा थान्सु मुवा बिहिन्बा 2 कोरन्थी 3:6 परमेश्वरले छार कबुल लबा मुला ओछे नन्द थे कबुल अनुसार गे लखम्ब मी शोभा मुला चु कबुल परमेश्वरला आत्मा से लबा कबुल हिन्ना बिबा थिम से लबा कबुल अहिन बिबा थिम से सिना लमुला तर परमेश्वरला आत्मा से चोना लमुला परमेश्वर से नन्दा छोना शक्ति पिन शुभ मुला परमेश्वर से थेरङ लसी लस्युजी परमेश्वर से व्याख्या लस्युबा कि परमेश्वर याङ देन याक्री करार लस्युजी थेन्दे नै दत्तेन लोभ्युबा बेनन भन्दा अचमलत्तम चोहिन बकि करार पवित्र आत्मज्ञम उत्पन्न तला चुल अर्थ संसार लहाजिबायन अध्यारो शक्ति से परमेश्वर से नन्दा पिन्सुबा करादा थुरबारी हामला चु करार पत्र ल आइनबा चुल अर्थ तिगहिनबा जब रंग हलाइदेन सम्झौता लस्यु मुला थेन्दे रंगला निश्चित आरे कि रंग थेनी गदे द थे सम्झौता ल अन्त्य छोना लाब्रे विश्वास लाब्रे हमसुला कि बिसी रंग तिग लस्युला रंग से याकर्गी कानूनी कागजात तयार लस्युला जुनरी सम्झौता ल शर्त गदे तमुला थेन्दे रंग से थेनी गदे द हस्ताक्षर लाब्रे लगप लस्युमुला चुसे चुदा अदालत बि कानूनी बाध्यकारी सम्झौता सुमुला परमेश्वर से नन्दा पिन्सुबा करार ल प्रतिज्ञा रोसी दस्तावेजी हस्तक्षेप लगा भन्दा लानन केन मुला चु आत्मरी तबा करार हिन्बा चुसे चुदा आत्मिक ग्लारी छम्बे प्राकृतिक ग्लारी एन बाध्यकारी सम्झौता सोमुला आत्मिक माध्यम ज्ञम करार ल प्रतिज्ञा यङमा कदे ज्ञान ताम हिन्बा चु करार से बेनन प्राकृतिक नियम कदे शासन लमुला चु संसारी हाजिबाई एन तामसे चुला विरुद्ध छेबरी अहम तिग्द विषम आत्मिक ग्ला प्राकृतिक ग्ला भन्दा फिरी मुला देन आत्मिक ग्लारी शैतानला हाजिबाई नोन शैतान शक्ति से चुदा थ्रुबा ग्याम काबरी अहम तिग्द विषम थेनी गरी परमेश्वर विरुद्धला हाजिबाई नोन युद्ध डाबरी असमर्थ मुला आनन्द लौ परमेश्वर तिनी मुसिला थेन्द्या हाइमा दमन याङला बेनन आवश्यकता कदेला लागरी याङला पुरन प्रदायक लसु मुला चुरोला याङदा लब करारला प्रतिज्ञा हिन्दा आमेन परमेश्वर से रङ्गिला जीवन रे प्रशस्त मात्र आशिष दिन्छु प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रे रङ्गिला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसम नन्दा सम्पर्क लसिगो नन्दा फोन नम्बर मुला 98-6-85-53-339 धन्यवाद हस्त त्यो समय रिङ बिदा ताजी रङ्गी छङमदानु जयमसी नमस्कार
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज
4: लस्तो है मेबे फेबेमा रङमा जे आरसीसी दिम बोरा चहरा दिन प्रे रखोरमा नगफारममा अस्तिम चमटार की ट्रनेलमा सिङबै सुर सिङजेपल मुबा होले सिङबै सुर मुसम ओम टंकेश्वर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम टोलरी सेगो होइ रोमा हुजुरिमी टिम फिटिङ सिङबै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई जम्मनु सामानमा होलसेल मूल्यारी यङबा असेम दिम सम्बन्ध बोरबरी ढुवानीलाई सुविधा न मुबा क्रङ्गुर्नाले बजार कोर्ब आहि नै रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 01052470 असेम 98511 87882 फोन सिङजिम सेगो है रोमा।

वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली लाइन्स चोक नारायणगढ़ मोबाइल 98550509334 ट्याङ्ला चोक कीर्तिपुर काठमाडौँ 98512409334

प्रेमा रंगमाझे आरसीसी दिम गोरा चहरा दिन प्रे रखोरमा नगा फारममा अस्तिम चमटार की टनेलमा सिंगबे सुर सिंगजेपल मुबा होले सिंगबे सुर मुसम ओम टंके सुर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सेगे होई रोमा हुजुरिमी दिम फिटिंग सिंगबे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरला जम्मनु सामानमा होलसेल मूल्यारी यंगबा अस्तिम दिम सम्म न बोरबरी ढुवानीला सुविधा न मुबा क्रयुर्णले बजार कोर्ब आही नै रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 01052470 असेम 98511 87882 फोन सिङजिम सेगो है रोमा।

लस हे मेबे फेबेमा रंगमाजे आरसीसी दिम गोरा चहरा दिन प्रे रखोरमा नग फारममा असिम चमटार की ट्रनेलमा सिंगबै सुर सिंगजेपल मुबा होले सिंगबै सुर मुसम ओम टंकेश्वर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम टोलरी सेगो है रोमा हुजुरिमी दिम फिटिङ सिंगबै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरला जम्मानु सामानमा होलसेल मूल्यारी यंग असेम दिम सम्मन बोरबरी ढुवानीला सुविधा न मुबा क्रङ्युर्नाले बजार कोर्ब आही नै रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 0105204470 असेम 98511 87882 फोन सिन्जिम सेगो है रोमा।

0: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज
1: सयों रेडियो हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN
2: सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN